0: presents Stories for Children.
1: Have you ever heard people talk about other people behind their backs? That means when they're not around. Did you listen? Did you ever say bad things about someone else when they were not around? It's called slander when you say something bad about someone else. And this is a story about slander. Once there was a king. He was a very wise king. He was very spiritual, too. He had many good qualities. But sometimes he could be mean if he was in a bad mood. One time, when the king was with his horses, a famous sadhu came to see him. The sadhu put his hands out and showed the king his begging bowl.
2: Do you have an offering for this old man?
1: The king was in a bad mood that day, and he ignored the guest. And the sadhu asked again.
2: You are a great man. Surely you can give some charity.
1: The king got annoyed at him and picked up a dried paddy of horse dung from the ground, and he put it in the old man's bowl.
3: Here is your offering. Run along, beggar.
1: The sadhu turned around and walked away, with only the paddy of horse dung from the king. But this sadhu wasn't an ordinary beggar. He was a holy man. It is said that one should always be kind to holy men and never insult them. If you insult a holy man, he can do two things. Either he can show you mercy and erase your karma, or he can allow your karma to happen right away. This sadhu didn't show mercy. He picked up that horse paddy and he threw it on the ground.
2: May it multiply.
1: The next day, the king noticed something very odd. There was a huge pile of horse paddies.
3: Ew!
1: The king was wise, and he knew that this had miraculously happened. He also knew why. He knew it was because he had been so rude to his holy guest. And so the king immediately began searching, and he found the sadhu.
3: Oh, Swamiji, 1,000 apologies. I am a worm to you. Please forgive me. I have been so rude.
2: You only got the natural consequence of your action.
3: What does that mean?
2: You will have to eat that whole pile of horse dung. If you do not, it will multiply even more, and you will have to eat even more.
3: Ew, disgusting! I have to eat a huge pile of dried up horse dung?
2: Yes, you do. Go eat it now before it increases. Right away, go eat.
1: The king desperately went back to the pile of horse patties.
3: Ew! I have to, eat the patties. But before they multiply even more,
1: He got close to the large pile.
3: Oh my, is such a big pile. Okay, I'll just take it a bit at a time. I'll just take this one patty and put it in my mouth. Oh, that smells so bad. Okay, and put foot in my... Oh, I can't do this.
1: The king was delirious. He went back to the sadhu.
3: Please, please, O sadhu, I beg you. Is there any other way? Is there any way to get rid of this pile so that it doesn't multiply? I don't want to have this load. I want to be liberated. Is there any way to get rid of this pile without eating it?
2: There is one thing you could do.
3: Yes, please tell me, and I will do exactly whatever you tell me, sir.
2: You have to make people think that you are bad.
3: Make my own people think I'm bad? But why?
1: The sadhu just looked at him.
3: Yes, yes. Okay, I'll do whatever you say. I'll make them think I'm bad.
2: People will start to slander you. And whenever someone slanders you, they will take a part of that pile off. It will go to them, and they will have to eat it, one way or another.
3: I will get people to think I'm bad, so they will slander me. Their slander will free me. Oh, thank you.
1: The king started right away. He told his agents,
3: go around and start saying bad things about me. Make up things so people will think I'm bad. Just make sure that people start talking about me in a really mean way.
4: Yes, sire. It will be my pleasure.
1: The agents did as the king told them.
4: Hey, you there. Hey, yeah, you. Did you ever hear that the king...
1: Pretty soon, all the people started slandering the king.
5: I heard the king used to steal from his own father, and now he steals from his own wife. He's a bad man.
6: The king isn't bad, he's terrible! I heard he kicks puppies. He doesn't even like kids.
1: The king watched the pile. It was getting smaller.
7: I heard he's mean to his parents and he beats children. He's the worst.
1: The pile of dung was decreasing day by day.
3: The slander! It's working! People must really be slandering me. Look at that pile going down!
1: By the end of the week, many people had spread slander through gossiping about the king. The slander became meaner and meaner. And people were now saying very bad things. And some people started to really hate the king.
5: I heard he hates God. He's very cruel to holy men, and he bows to stones. He's a faithless and blind heretic. He shouldn't be alive.
1: Pretty soon, the pile decreased to be so small that there were only a few pieces of horse dung left.
3: There's hardly anything left! Thank you, people! Thank you for slandering me! It looks like I won't have to eat anything now! Ha ha ha! Woohoo!
1: And finally, there was only one patty of horse dung left.
3: Ha ha ha! Only one! I love people who slander me. They're saving me! Ha ha ha ha ha!
1: The king waited for this last piece of dung to disappear. He kept waiting. The king knew that people were still slandering him. Yet this last piece did not disappear.
3: Why won't this last one go away?
1: After another day, it still didn't disappear, even though lots of people were still slandering him.
3: I don't want to eat this. Something is wrong. Why won't it go away?
1: So the king went to see the sadhu again.
3: Excuse me, Swamiji. Sir, it's just that there's still one horse patty left, and...
2: Yes, and you don't want to eat it. I know. There is one person who has not slandered you.
1: The sadhu smiled with a sparkle in his eye.
2: He is a hermit who lives by himself. If you want him to slander you, if you want him to eat that last piece so that you can be free, if you want him to think that you are bad, you have to personally go yourself.
3: I will go immediately.
1: So the king went to the hermit's house. Now the hermit was also a holy man. He was very wise. The king knocked on his door.
3: Hello? Hello? Is there anybody there? Hello?
1: From inside, the hermit yelled,
8: Go away, king. I'm not eating it. It's yours. You have to eat your own dung.
1: When we slander someone else, we take on that person's garbage. Sometimes it's hard not to talk behind people's backs, especially when those other people do something we think is bad. But if you stop yourself from saying bad things about others... Then you will not have to eat their garbage.
0: That was a really nice story. For more, go to seeknut.com/story.
9: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ?
10: ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ।
9: ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
10: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ।
9: ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ। ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪੋ,
11: ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ।
9: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਪੋ,
11: ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ।
9: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
10: ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼, ਸ਼ਾਂਤ।
9: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
10: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9: ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर ये भी सच है कि ऐसी सब कुछ नहीं समझ सकते। एक बार श्री गुरु हर राय साहब जी नू कुछ सिखा ने यही सवाल पूछे,
12: गुरु साहब महाराज साडा एक सवाल है।
9: अते गुरु जी ने उन्हां दा सवाल सुनिया,
12: असी बहुत सत्कार नाल गुरबाणी दा जाप करदे हां अते असी हर वेले ही जाप करदे रहंदे हां, पर कदे कदे सानू अर्थ समझ नहीं आउंदे कि असी की जाप कर रहे हां, ते जेकर सानू बाणी समझ ना आवे तो की जाप करन दा फायदा है।
9: गुरु जी ने उन्हां दे सवाल दा उस समय उत्तर नहीं दिता, ते गुरु जी सिर्फ मुस्कुराए। गुरु जी ने सही समय का इंतजार किया ताकि वह उन्होंने उत्तर देने की बजाय अनुभव द्वारा सिखाउण। गुरु जी हमेशा सानू अनुभव तो ही सिखाते हैं। कि तुसी जानते हो कि उन्होंने की किया? उन्होंने कुछ दिन तक इंतजार किया, तो एक दिन गुरु साहब उन्होंने घोड़े से सवार होकर जा रहे सन। गुरु साहब ने सिंगा नू रुकण लई कहा अते पुछया, की तुसी उस मिट्टी के घड़े नू देख रहे हो?
12: वो जो जमीन ते टुटिया होया है।
13: जी गुरु जी दिख रहा है।
9: गुरु जी ने उन्होंने कहा, उस घड़े का एक टुकड़ा लियाओ। अते उन्हां विच्चों एक सिख उत्तर गया ते टुकड़ा चुक ले आया।
13: गुरु जी ए है जी,
9: इस घड़े विच घिओ सी, क्योंकि यह धुप विच पिया होया सी, इस करके धुप नाल घिओ पिंगल रहा सी, इस करके धुप नाल घिओ पिघल गया सी, अते घड़े दे अंदरों पिंगल के एक लकीर बना के मिट्टी च समा रहा सी। श्री गुरु हर राय साहब ने समझाया, गुरबाणी सिमरन दे नाल इसे तरह हुंदा है, भावें सानू गुरु दे शब्द समझ नहीं आते, पर जेकर असी भगती भाव नाल जपते हाँ तो यह मन विच वस जाते ने, बिल्कुल इस तरह जिस तरह घड़े नू घ्यो चिपक जाता है। ते जिस दिन ज्ञान दी रोशनी साडे मन विच पैदा हुंदी है ता शब्द इस पिंगले होए क्यों दी तरह साडे मन विच समा के ज्ञान पैदा करदे हन।
13: मैं उस ज्ञान दी उड़ीक कर रहा, ओ भागा वाला दिन होवेगा।
9: फिर गुरु जी ने उपदेश दिता, भावे असी इस नू ना समझिए पर गुरबाणी साडी मुक्ति दा राह है।
13: वाह जी वाह, वाहे गुरु।
9: देखो किवें गुरु साहब सानू किन्ने सुंदर ढंग नाल समझाउंदे हन।
13: धन श्री गुरु हर राय साहब जी, धन श्री गुरु हर राय साहब जी, धन श्री गुरु हर राय साहब जी।
10: असी भी इन्हां नू अपने मन विच महसूस कर सकिए,
9: असी भी तुहाडे विच समा सकिए। जपो, प्यार अते सत्कार नाल ध्यान करो।
11: एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच।
14: सिख नेट दी कहानियां विच तुहाडा स्वागत है। सारी कहानियां दा आनंद लेने लई ऐप डाउनलोड करो।
15: एक वार एक पिंड हुंदा सी जिथे गुरु नानक फेरी ते गए। एक बंदे ने अपने दोस्त नू दसिया कि तुसी ए खबर सुनी है, गुरु नानक इत्थे नेड़े ही रह रहे हन।
16: कौन? अच्छा अच्छा, ओ हां, मैनू लगदा है मैं उना बारे सुने है।
15: ओ रब दा बिलकुल सच्चा बंदा है, मैं जदों तक उना नू मिल नहीं लेंदा मैं कुछ भी खावा पीवांगा नहीं।
16: हर रोज ओ दोनों बंदे इकट्ठे ही काम करदे अते घर वापस आउंदिया समय अपने अपने राहां वल तुर पैंदे।
17: वाहिगुरु वाहिगुरु।
15: अते दूजा बंदा हले सोच रहा सी,
17: मैनू लगदा मैं भी गुरु जी नू मिलन जावा शायद।
15: करो चलन लग्या उसने अपने घर वाली नू कहा,
17: चंगा भागवान ने, मैं गुरु नानक नू मिलन चलिया।
18: मैं अते बच्चियां ने ए कुछ मिठाइयां बनाईयां हन, ए तुसी गुरु जी नू पेंटा दे तौर विच दे देना। साडे कोल देण लई ज्यादा कुछ ता नहीं है, पर अजेहे संत नू कुछ ना कुछ ता देना ही चाहिदा है।
17: मैं गुरु जी नू ए पेंटा दे देंगा, तू फिकर ना कर।
15: गुरु जी नू मिलन जान वाले रस्ते विच उसने सड़क ते खड़ी एक औरत वेखी।
19: ना ना उस रास्ते ना जा, इधर आ मेरे कोल, आ जा आपा दोवां मिलके बहुत मजे करांगे, आपा जुआ खेडण जाके तेरा सारा पैसा लुटा सकदे आ, चल ना तू मैनू थोड़ी शराब ही खरीद के दे सकदा।
4: वैसे ये सब सुनन विच किन्ना मजेदार लग रहा है,
20: पर मैं तो उस ही रस्ते ते चलिया गुरु जी दे वल।
19: की सिगरेट पीण दा मन है? एले सिगरेट पी, तेरी पत्नी नु है कदे भी पता नहीं चलेगा कि तू मेरे नाल है।
4: ठीक है, इस बार मैं इस दे नाले समा बितावांगा।
19: चलो चलिए, मैं चाहुंदी हां कि तू मैनू बहुत कुछ खरीद के देवे।
15: ता उस बुरे दोस्त ने घर विच बनाईया मिठाइयां गुरु जी नु नहीं दितियां जो उसने वायदा कीता सी। इस दी बजाय उसने शराब पीती, सिगरेट पीती अते अपने पैसे दा जुआ खेडिया। उसने उना लोकां नाल अपना समा बिताया जो कुछ चंगा नहीं करदे होए अपनी जिंदगी बर्बाद करदे हन।
19: गुरु जी नाल समा बिताना की हो जा लग्या?
21: अच्छा ओ गुरु जी, हाँ चंगा से बड़ा ही आनंदमय सी थे, बड़ा ही चंगा सी।
19: कि उन्होंने सारी भेंटा स्वीकार की थी?
21: भेंटा केड़ी भेंटा? अच्छा मिठाइयां, हाँ मिठाइयां उन्होंने रख लिया थे, क्या कि हाँ आशीर्वाद, हाँ कुछ दे कुछ बहुत आशीर्वाद। हाँ
15: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते ओना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, कृपा करके पेंटा स्वीकार करो, एस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजर हां, कृपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा दियो। हर रोज ओ दोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल ओना दे वचन सुनन,
22: वाहे गुरु,
15: शब्द गाउन,
22: वाहे गुरु, वाहे गुरु,
15: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडन, उस औरत नाल शराब अते सिगरेट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोकां नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एक कई दिनां तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
4: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितौना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, ता फिर की फर्क पैंदा कि असी चंगा करिए जां माड़ा, अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
15: दूजे दोस्त ने कहा,
23: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनु विश्वास है कि आपा नु सही उत्तर मिलेगा। कल नु मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नु जवाब अपने आप मिल जाएगा।
4: इंज ही करदे हां, मैं देखण ले उत्सुक हां कि की होण वाला है।
23: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपा कल ही मिलांगे।
15: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निग्गी गोद विच बह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
4: की तू इत्थे है दोस्त? नहीं?
15: उन्हें इंतजार कीता,
4: ला ला ला ला।
15: होर इंतजार कीता अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया ता उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
4: सोना?
15: उसने होर खोदिया
2: ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ,
21: ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ।
2: ਪਰ ਉਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੌਲਾ ਸੀ।
21: ਕੌਲਾ? ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।
2: ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
5: ਮੇਰਾ ਪੈਰ!
21: ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ?
5: ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਮੇਰੀ।
2: ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਨ।
21: ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ।
23: ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
21: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ?
23: ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

0: ना कुछ तो देना ही चाहिए है।
1: मैं गुरु जी नू ए पेंटा दे देंगा, तू फिकर ना कर।
2: गुरु जी नू मिलन जान वाले रस्ते विच उसने सड़क ते खड़ी एक औरत वेखी।
3: ना ना उस रास्ते ना जा, इधर आ मेरे कोल, आ जा आपा दोवां मिलके बहुत मजे करांगे। आपा जुआ खेडण जाके तेरा सारा पैसा लुटा सकदे आ। चल ना, तू मैनू थोड़ी शराब ही खरीद के दे सकदे।
1: वैसे ये सब सुनन विच किन्ना मजेदार लग रहा है,
4: पर मैं तो उस ही रस्ते ते चलिया गुरु जी दे वल।
3: की सिगरेट पीण दा मन है? एले सिगरेट पी, तेरी पत्नी नु है कदे भी पता नहीं चलेगा कि तू मेरे नाल है।
1: ठीक है, इस बार मैं इस दे नाले समा बितावांगा।
3: चलो चलिए, मैं चाहती हाँ कि तू मैनू बहुत कुछ खरीद के देवे।
2: ता उस बुरे दोस्त ने घर विच बनाया मिठाइयां गुरु जी नु नहीं दितियां जो उसने वायदा किया सी। इस दी बजाय उसने शराब पीती, सिगरेट पीती अते अपने पैसे दा जुआ खेडिया। उसने उना लोका नाल अपना समा बिताया जो कुछ चंगा नहीं करदे होए अपनी जिंदगी बर्बाद करदे हन।
3: गुरु जी नाल समा बिताना की हो जा लग्या?
5: अच्छा, ओ गुरु जी, हाँ, चंगा से बड़ा ही आनंदमय सी थे, बड़ा ही चंगा सी।
3: कि उन्होंने सारी पेंटा स्वीकार की थी?
5: पेंटा केड़ी पेंटा? अच्छा, मिठाइयां। हाँ मिठाइयां उन्होंने रख लिया थे कि हाँ कि हाँ आशीर्वाद, हाँ कुछ दे कुछ बहुत आशीर्वाद। हाँ
2: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते उना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, कृपा करके पेंटा स्वीकार करो, एस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजर हां, कृपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा देओ। हर रोज उदोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
6: वाहे गुरु,
2: शब्द गाउन,
6: वाहे गुरु, वाहे गुरु,
2: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडण, उस औरत नाल शराब अते सिगरेट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोका नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एह कई दिनां तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
1: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितोना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, ता फिर की फर्क पैंदा कि असी चंगा करिए जां माड़ा, अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
2: दूजे दोस्त ने कहा,
4: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनू विश्वास है कि आपा नू सही उत्तर मिलेगा। कल नू मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नू जवाब अपने आप मिल जाएगा।
1: इंज ही करदे हां, मैं देखण लई उत्सुक हां कि की होण वाला है।
4: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपां कल ही मिलांगे।
2: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निग्गी गोद विच बह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
1: की तू इत्थे है दोस्त? नहीं,
2: उन्हें इंतजार कीता होर इंतजार कीता। अते जदों ओ इंतजार कर करके अक गया ता उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
0: सोना
2: उसने होर खोदिया। ओनू कुजा मिलिया। उसने सोचिया,
5: अज मेरा दिन चंगा है, हो सकदा है इत्थे होर भी सोना होवे।
2: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
5: कौड़ा? ओहो, ये ता बड़ा निराशाजनक है। पर शुक्र है मैनू एक सोने दा टुकड़ा ता मिलिया। चलो यही सही है।
2: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संकत तो वापस आया।
7: ओ
2: लंगड़ा रहा सी।
7: आए मेरा पैर।
5: की हो गया तैनू?
7: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी, अते मैं तिलक गया ते मेरा पैर एक वड्डी कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई। माड़ी किस्मत आ मेरी। आए
2: ओह दोवे ही बड़ी उलझन विच सन।
5: ऐस गाल दी कोई समझ नहीं लग रही। असी उस ईश्वर तो पुछया कि साडे चंगे जा माड़े कर्मा नाल कोई फर्क पैंदा है, अते कि ए ओदा जवाब है मैं बुरा कीता, मैनू सोना मिलिया, जद कि तू चंगा कीता अते तैनू सट वज गई।
4: मैनू विश्वास है कि ईश्वर ने सही जवाब ही दिता होवेगा।
5: मैनू ए जवाब बिलकुल भी समझ नहीं आया, इसका की मतलब होया?
4: मैं भी मंदा हाँ कि मैनू भी इस दी समझ नहीं लगी। आपां नू गुरु जी कोल जाना चाहिदा है, ओ सानू इनू समझाण विच मदद करनगे।
2: अगले दिन ओह दोवें गुरु नानक देव जी कोल गए।
4: गुरु जी मैं हर रोज तुहाडे कोल आउंदा हाँ, अते मेरा दोस्त भी हर रोज अपने परिवार नू यही दसदा है कि ओह तुहाडे कोल आउंदा है, पर इस दी बजाए ओह उस औरत कोल जांदा है जिसने इस नू झांसे विच पाया ते गुमराह कीता होया है।
2: उसने सारी स्थिति बारे विस्तार नाल दसिया, किवें उहनां दोवां ने अपना अपना समा बिताया अते किवें उस नू सट वज गई अते उस दे दोस्त नू सोना लभ गया।
4: सो असी दोवें उलझण विच हां, तुसी इस दे राहें सानू की संदेशा देना चाहुंदे हो?
2: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल समझाया कि अपनी पिछली जिंदगी विच चंगा दोस्त एक लुटेरा सी अते उसने लोकां कोलों बहुत कुछ लुटिया। उसने बहुत सारे झूठ बोले अते बहुत माड़े काम भी कीते। इस मौजूदा जिंदगी विच उसकी मौत कंडा चुभण करके लिखी हुई सी, पर उसने बहुत प्रगति कीती अते अपने समय की वरतों चंगे तरीके नाल कीती अते अपना मन उस ईश्वर दे पवित्र नाम नाल साफ कर लिया। ओ पवित्र संगत विच रच मिच गया अते अपने बहुत सारे माड़े कर्म धो लए। इस दे अपने उपर कीते कर्मा कारण इस दे कर्म इस हद तक ठीक हो गए कि मरण दी बजाए उस नू सिर्फ पैर ते ही सट लगी।
4: वाहे गुरु। गुरु जी मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ। अते मेरा दोस्त?
2: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल फेर तो समझाउंदे होए कहा कि अपनी पुरानी जिंदगी विच माड़ा दोस्त एक भला इंसान सी। ओ दूजिया नाल अपना सब कुछ सांझा करदा सी। एक वार ऐस ने एक संत आदमी नू सोने दा एक टुकड़ा दिता सी। उस श्रद्धा अते साफ दिली कारण सोने दा ओ सिक्का कई गुणा ज्यादा वध गया। उस नू एक पूरा सोने दा कुजा मिलन वाला सी, पर उस दे अपने करनी कारण उस दे चंगे कर्म कट गए अते सोना कोले विच तब्दील हो गया। उस नू सिर्फ ओही एक सिक्का प्राप्त होया जो उसने पहला दिता सी। उना दोवां ने अपने आप नू निमाणा महसूस कीता अते शुकर करन लई गुरु जी दे चरणा विच डिग पए।
5: वाहिगुरु।
2: साडे सब दे अपने कर्म हुंदे हन, कोई चंगी जा माड़ी किस्मत नहीं हुंदी। सानू जो भी अपनी जिंदगी च मिलदा है ओ अपनी पिछली करनी करके मिलदा है। अपनी कीमती जिंदगी नू बर्बाद ना करो, इस दी बजाए जिन्ना हो सके संत रूपी इंसाना दी संगत विच रहो। जे तुहाडे माड़े कर्म हन तां तुहाडी किस्मत माड़ी हो जावेगी, जे तुहाडे कर्म चंगे हन ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਦਾ ਤੈ ਦੀਏ, ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇਹੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3: ਸਿੱਖ ਨੇਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।